हम लोग जगजीत जी से बात कर रहे थे और मैं उस जगजीत जी से बात करने से पहले आपके साथ डिस्कस कर रही थी उलझन के ऊपर बात कर रही थी थोड़ी सी और दो चार लाइनें उलझन के ऊपर आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी उलझन केवल तभी तक एक उलझन है जब तक उसके सभी कण गतिमान होते हैं कोई भी उलझन केवल तभी तक उलझन बनी रहती है जब तक कि उसका कोई तथ्य स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता या समझा नहीं जाता मूर्खता का मूल कारण उलझन है मूर्ख व्यक्ति के लिए अत्यंत सरल बातों को छोड़कर सभी बातें उलझन भरी होती हैं अतः यदि व्यक्ति उलझन की संरचना को समझ ले तो उसकी प्रतिभा में और वृद्धि हो जाएगी चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों ना हो अगर आपने कभी सीखने की इच्छा रखने वाले किसी युवक को सिखाया हो जब बहुत अधिक प्रतिभाशाली नहीं था तो आपको ये सिद्धांत अच्छी तरह समझ आ जाएगा आप उसे समझाने का प्रयास करेंगे कि कोई वस्तु कैसे काम करती है आप उसे शुरू से अंत तक समझाते हैं और अनेक बार समझाते हैं और फिर आप उसे उस मशीन पर काम करने की अनुमति दे देते हैं लेकिन वह दूसरे ही क्षण सब कुछ गड़बड़ कर देता है उसे समझ नहीं आया जो कुछ आपने समझाया उसकी बुद्धि में नहीं बैठा आप उसकी ना

0: जी को अपने दिमाग में समझ सकते हैं और अब आपका यह कहना सही होगा कि वे उलझन में पड़ गया है। यदि कोई विद्यार्थी उलझनों में घिरा है तो केवल इसी आधार पर उसकी 99% शिक्षा को असफल कहा जा सकता है। केवल नौकरी के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन में भी जब जब असफलता का मुंह देखना पड़ता है तो किसी न किसी रूप में उसके पीछे कोई उलझन छिपी होती है। किसी मशीन के बारे में सीखने के लिए या जीवन जीने के लिए व्यक्ति में उलझनों का मुकाबला करने या उलझनों से अलग होकर उनको देख पाने की योग्यता होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ। और जगजीत जी, अभी हमारे जो कुछ लिसनर्स हैं वो अपने राशि के बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं, तो आप आज उनमें से कौन सी राशि के बारे में हमारे साथ डिस्कस करेंगे?
1: जी हाँ, अगर मैं स्टार साइन की बात करता हूँ तो इस बार हम सैजिटेरियस यानी कि धनु के विषय में बात करेंगे।
0: जी,
1: जैसे कि अगर सैजिटेरियस की बात करता हूँ तो होरोस्कोप की भी अगर मैं बात करूँ तो इस जो स्टार साइन है या राशि को जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं वो हैं जुपिटर। और होरोस्कोप की अगर बात करें तो जुपिटर होरोस्कोप में बहुत सारी जो चीज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंट हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं या फादर हैं उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर जुपिटर की जो स्थिति है होरोस्कोप में अच्छी रहती है तो इंसान काफ़ी धार्मिक रहता है, अच्छे कार्य करने वाला रहता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर जुपिटर और राहु के जो योग हैं ये अच्छे नहीं माने जाते, क्योंकि जुपिटर जो है वो हमेशा जो फ्रेश एयर है उसको माना जाता है और राहु जो होता है वो कड़वा धुआं रहता है, जहरीली हवा रहती है। तो बृहस्पति राहु के जो योग हैं ये अच्छे नहीं माने जाते। तो इसी तरह से अगर मैं धनु सैजिटेरियस की बात करता हूँ तो इस स्टार साइन के जितने भी जातक हैं अगर अपनी ज़िंदगी में येलो कलर का, पीले रंग का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इस राशि के जातक अगर घर में कई बार बैठते हैं, छोटी छोटी डिस्कशन पर डिफरेंस ओपिनियन हो जाते हैं, तो उस वक्त अगर किसी भी चांदी के बर्तन में हम हल्दी लगाकर घर में कहीं भी स्थापित करते हैं तो माना जाता है कोई वास्तु दोष है, तो उस समय भी ये अच्छा माना जाता है। जैसे कि जो जुपिटर है ये पिता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर व्यक्ति अपने पिता की, फादर की दी हुई वस्तुओं का यूज़ करता है, चाहे पिता के कपड़े रहें और चाहे बिजनेस है, तो वो ज़रूर अच्छा रहता है। अगर फादर के बिजनेस को वो आगे बढ़ाए तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और दूसरा, इस स्टार साइन के जो जातक हैं अगर अपने घर में येलो जो फ्लावर रहते हैं, पीले फूल वाले जो पौधे लगाते हैं, तो वो अच्छा माना जाता है, वो बच्चों के लिए भी अच्छा माना जाता है। और इस राशि का जो उत्तम दान माना गया है वो घी, दही, कपूर, इन चीज़ों का अगर दान धर्म स्थान पर करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि इस राशि के जातक अगर कोई धार्मिक तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, अगर उनकी मदद करते हैं किसी भी तरह से, तो वो भी अच्छा माना जाता है।
0: जी जगजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए। जब भी आपसे बातचीत होती है तो वक्त कहाँ भाग कर चला जाता है, हमें हमेशा वक्त की कमी खलती है और यही सोचते हैं कि आपसे और ज़्यादा जानकारी लें, मगर हमेशा इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे आने वाले प्रोग्राम में हमारे साथ फिर से शामिल होंगे, हमें हमारे जो लिसनर्स के कुछ जो सवाल हैं उनका आप जवाब देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम अपने लिसनर्स से हमेशा अलविदा मांगते हैं और उनकी बेस्ट विशेस की हमेशा कामना करते हैं। आज के प्रोग्राम में साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जब तक उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त जो हमारे लिसनर्स का है बहुत अच्छा निकले, जहाँ पर रहें वो सही सलामत रहें, हमारी दुआ है उनके लिए। और जगजीत जी, नमस्कार।
1: नमस्कार।